अक्सर हम लोग भाग दौड़ भी इस सुहानी भोर को जीना ही भूल जाते हैं। देर से उठना, फिर वही दफ्तर या कॉलेज की जल्दबाजी, लेकिन कभी कभी जरा अलार्म को आधा घंटा पहले

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:42 और 40 सेकंड। भोर सुहानी का कार्यक्रम। हाथ में चाय का गर्म कप हो, बालकनी में बैठकर चिड़ियों की वो चहचहाहट सुनना और पत्तों पर थिरकती ओस की बूंदों को देखना, वाकई दिल की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भोर के समय हवा में एक अलग ही दुआ होती है, जो इस वक्त जाग गया वो अपनी झोली खुशियों से भर लेता है।

फिलहाल भोर सुहानी से रूपा विदा लेती है, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह आकाशवाणी दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: మరికొద్దిసేపట్లో హిందీలో వార్తలు వింటారు.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे. मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी. कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा. इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा. हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा. कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया. इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया. DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है. वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है. कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा. इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी. वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी. निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की. बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं. उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का

0: प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Good morning, beautiful people. Time in the studio clock is 10:03, and you're tuning to Akashvani FM Rainbow 101.9, where rainbow adds color to your life. Aur shuru ho chuka hai aapka favorite segment. Namaste, hello, adab, aur kaise hai aap? I'm your dost and host for the day, RJ Jagriti. So tell me, how's your Sunday going? आप कहेंगे जागृति संडे की सुबह है और आज थोड़ा लेजी फील हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। आखिर संडे बना ही इसीलिए है, थोड़ा देर तक सोना, थोड़ा आराम करना, अपनी फेवरेट चाय या कॉफ़ी की चुस्की लेना और सबसे ज़रूरी खुद को थोड़ा वक्त देना। वेदर का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी गर्मी कभी बरसात,

कभी धूप कहीं छाया, और यही है ईश्वर की माया। और अगर उस चाय की पहली चुस्की के साथ आपने FM रेनबो ट्यून इन कर लिया है, देन ट्रस्ट मी, योर संडे इज ऑलरेडी ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। एक चीज गारंटी है, अगले 4 घंटे इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट जी नहीं, यहाँ पर रहेगा 3 का तड़का, क्योंकि ये ट्राइलिंगुअल शो है और यहाँ पर मिलेगा म्यूजिक, ढेर सारी बातें और इंटरटेनमेंट। मैं हूँ, ये स्टूडियो क्लॉक है, और सबसे खास आप हैं। नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट, धमाकेदार बातें, जबरदस्त गाने और ढेर सारी मस्ती के साथ। तो डियर लिसनर्स, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि रेनबो एक्सप्रेस अब चलने वाली है अपने म्यूजिकल सफर पे। टेक इट अवे।

Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. Rainbow adds color to your life. And I'm your RJ Jagruti, host and toast for the day. You know what? What I love about the music most is music does not need a passport. It does not care which language you speak or where you come from. A good song can make a stranger smile, bring back memories and connect hearts across the world. That's the magic of the music, you know. And और इसी म्यूजिक को सेलिब्रेट करने के लिए आज के शो में हम लेकर आए हैं द परफेक्ट म्यूजिकल ब्लेंड, योर फेवरेट बॉलीवुड मेलोडीज, फुट टैपिंग हिंदी हिट्स एंड सम अमेजिंग वेस्टर्न म्यूजिक. बिकॉज हियर ऑन FM रेनबो वी डोंट बिलीव इन म्यूजिकल बाउंड्रीज, वी बिलीव इन म्यूजिकल कनेक्शंस. तो चाहे आप घर पर संडे इंजॉय कर रहे हो, मॉर्निंग ड्राइव पे निकल रहे हो, किचन में बिजी हो या बस वीकेंड की रिलैक्स्ड वाइब को इंजॉय कर रहे हूँ, FM रेनबो 101.9 इज योर परफेक्ट कंपेनियन. और मेरे साथ ये स्टूडियो क्लॉक है और सबसे खास आप हैं और मैं हूँ आपकी आरजे जागृति. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9. रेनबो इट्स कलर टू योर लाइफ एंड रेनबो के साथ लाइफ रंगीन. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग ऑफ द डे. टर्न अप द वॉल्यूम, सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स get the music rolling.

Welcome back, listener. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. Rainbow adds color to your life. So, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंगर बेधड़क आवाज बिना किसी शोर के दिल तक पहुंच जाने वाली गायकी और एक ऐसा सिंगर जिसके गाने हर जनरेशन के इमोशन का हिस्सा बन गए। दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे गायक जिनकी आवाज आज भी हमारे प्लेलिस्ट में जिंदा है। वो हैं केके। केके का पूरा नाम है कृष्ण कुमार कुनत, एक ऐसा नाम जिसे शायद पब्लिसिटी की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी क्योंकि उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान थी।

दिल्ली से अपनी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत करने वाले केके ने पहले एडवर्टाइजिंग जिंगल्स गाए। कहते हैं उन्होंने हजारों जिंगल्स रिकॉर्ड किए और फिर बॉलीवुड ने उनकी आवाज़ को पहचाना। उनका पहला गाना था तड़प तड़प के इस दिल से, फ्रॉम मूवी हम दे दिल दिल दे चुके सनम से। सो टेक इट अवे। हम उनके बारे में और भी बातें करेंगे इस गाने के बाद।

दोस्तों हम सुन रहे थे के को, उनकी आवाज़, उनका पहला बॉलीवुड सॉन्ग। कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। और जब भी दिल की बात शुरू में बयां करने की बात आती है, एक नाम अपने आप ज़ुबान पर आ जाता है, के। आज हम याद कर रहे हैं उस गायक को जिनकी आवाज़ ने प्यार, दोस्ती, इंतज़ार, जुदाई और ज़िंदगी के हर एहसास से सुर दिया है। केके सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो सादगी के मिसाल थे। जो बॉलीवुड में लोग लाइमलाइट और ग्लैमर के पीछे भाग रहे थे, केके अपनी म्यूज़िक की दुनिया में खुश थे। ना किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने, ना कभी स्टारडम का दिखावा किया। उनका मानना था गाने हिट होने चाहिए, सिंगर नहीं। और शायद इसीलिए उनकी आवाज़ घर घर पहुंच गई, लेकिन उनकी सादगी कभी नहीं बदली। फैमिली को समय देना हो, अपनी जड़ों से जुड़े रहना हो और काम को पूरी शिद्दत ईमानदारी से करना, यही था केके के जीवन को जीने का ढंग। हम केके के बारे में और भी बातें करेंगे, उनके गानों को याद करेंगे, उनके उनके गानों के ज़रिए अपनी मेमोरीज को ब्रिंग बैक करेंगे, ऐसे और बातें करेंगे एक और गाने के साथ। टेक इट अवे।

रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और कुछ ऐसे ही रंगीन पल, अच्छे पल हम याद कर रहे हैं केके जी के, उनके गानों के साथ। अभी आप सुन रहे थे ए बेखबर, कितना अच्छा गाना। मतलब जब आप सुनते हैं तो उस म्यूजिक में डूब जाते हैं। और केके का जो एल्बम है, आप कोई सा भी गाना ले लीजिए, चाहे वो तो पल, और उसका टाइटल ट्रैक पल आज भी याद है कि डायरी में सबसे खूबसूरत पन्ना है। और यारों, ये सिर्फ एक गाना नहीं, याद है ना, यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है। यस, ये उन्हीं का गाना है। और ये बस गाना नहीं, दोस्ती का एंथम है। आज भी किसी फेरमिल में ये गाना बज जाए तो आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे गाने हम आज सुनेंगे केके जी के, और उनकी लाइफ की बहुत सारी बातें करेंगे, कैसे उनका म्यूजिकल जर्नी शुरू हुआ, क्या कैसे वो लाइव कंसर्ट करते थे और लोग कैसे झूम जाते थे, और भी बातें करेंगे एक छोटे से और गाने के साथ। ये भी उनका बहुत ही फेमस सॉन्ग है और सबके दिलों में गाना रखा है। टेक इट अवे।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज के सर की, उनके गाने सुन रहे हैं। उनके गाने मतलब मैं स्टूडियो में सुन के एकदम मग्न हूँ कि कितने अच्छे गाने हैं। लोग चले जाते हैं लेकिन उनके गाने अमर हो जाते हैं। यही कहा जाता है लेखक और गायक के बारे में कि वो तो नहीं है लेकिन उनके सॉन्ग्स अमर रहते हैं। जब भी हम उनके गाने सुनते हैं, मेरे हमारे दिमाग में, हम सब के दिमाग में उनकी यादें ताज़ी हो जाती हैं। वो मोमेंट याद आ जाता है जब हमने उस सॉन्ग को पहली बार सुना था। और जब हम बात कर रहे हैं के की, तो उन्होंने इतने सारे हिंदी गाने रिकॉर्ड किए हैं, हमारे साथ उन्होंने गाए हैं, कॉन्सर्ट किए हैं। तो आपको लग रहा होगा कि एक ज़रूर नॉर्थ इंडिया के होंगे। नहीं, ये एक मलयाली फैमिली में जन्मे थे लेकिन दिल्ली में पढ़ाई किया और मुंबई ने, माया की नगरी मुंबई ने इन्हें अपना लिया। और समय के साथ साथ ही इन्होंने कई सारे गाने रिकॉर्ड किए, जैसे है कि ज़रा सा, फिल्म जन्नत से जो भी आप सुन रहे थे, खुदा जाने, बचनाए हसीनों से, आंखों में तेरी, ओम शांति ओम, ये गाना तो सबको याद होगा। मतलब एक कपल का थीम बन गया था वो, जो मोमेंट उस मूवी में आता है। और एक गाने का कॉम्बिनेशन, के की आवाज़, ये जो कॉम्बिनेशन था ना, सबसे परफेक्ट, बॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे परफेक्ट सॉन्ग माना जाता है और कपल एंथम बना था आंखों में तेरी। ये गाने भी सुनेंगे उनकी हम। और फिर है दिल इबादत, बीते लम्हे और अलविदा, फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो से। होता है ना कि हम किसी को अलविदा नहीं कह पाते हैं, लेकिन जब हम पूरा जिंदगी एक पहचान बनाने में, लोगों को इंटरटेन करने में, अपनी भावों को, अपनी जज्बात को, अपने प्यार को, दोस्ती के कुछ लम्हे को जब हम सुरों में तय करने की कोशिश करते हैं, तो वही जिंदगी हो जाती है। और ऐसे ही है हमारे के, ऐसे ही थे। और उनका आज ही के दिन 31 मई को जब वो लाइव कंसर्ट कर रहे थे, तो अचानक से उनको हार्ट अटैक आया था। और एक एक कलाकार के लिए सबसे अहम बात होती है कि जिस चीज़ को उन्होंने पूरी जीवन समर्पित किया था, म्यूज़िक को, वही मोमेंट जीते जीते उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा था। बहुत सारे उनके गाने सुनेंगे, बहुत आज उनकी याद करेंगे, गानों के जरिए उनको याद करेंगे। और हम ये कहेंगे कि हम रहे या ना रहे, मेरे गाने रहने चाहिए। और उनका गाना भी कुछ ऐसा ही है, पल जो सॉन्ग है उनमें यही कहते हैं, हम रहे या ना रहे, कल याद आएंगे ये पल। वो भी गाने सुनते हैं। ये जो गाने में अब बजाने जा रही हूँ, क्या मुझे प्यार है, ये सॉन्ग आते ही, मतलब मैंने देखा है कंसर्ट्स में जब वो गाते थे, तो पूरा जो म्यूज़िक, वो कंसर्ट होता था, पूरे ऑडियंस झूम जाते थे, क्योंकि ये गाना नहीं, एंथम था, एंगेस्टर्स का एंथम था, टेक इट अवे।

Welcome back, listeners. You are listening to Akashvani FM Rainbow 101.9, Rainbow Adds Color to Your Life. और आज का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है मन की बात. जी हाँ, आज है इस महीने का सब आखिरी रविवार संडे, जहाँ हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनते हैं. हम और आप तो रोज़ अपनी मन की बातें करते हैं, लेकिन आज है समय उनकी मन की बात सुनने का. वो पूरे भारत की मन की बात को अपने मन की बात से सबको सुनाते हैं, सबसे बात करते हैं, तो हम यही सुनेंगे उनकी मन की बात को.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम,
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई,
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से।

0: मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
2: नमस्कार सर। नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
1: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली, जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, कभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली।

0: या सर, फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो

0: दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है, वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, सम्बारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा।

आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों,

हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद

मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी
विशेष सराहना करता हूँ।

अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मन की बात, उन्होंने कितनी सारी बातें की, कितने सारे युवा को प्रोत्साहित किया है खेल कूद के लिए। उन्होंने अपने भारत के स्प्रिंटर जिन्होंने 100 मीटर में अभी विजय हासिल किया है, गुरविंदर सिंह से बात की, उनके दोस्तों से बात की और बताया, और उन्होंने बताया कि कैसे वह मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किए हैं, और हर चीज़ के पीछे एक कड़ी मेहनत, धैर्य, साहस और आपकी खुद की आत्मशक्ति होती है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि वो पूरे भारत के युवाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनको प्रोत्साहित कर रहे थे कि खेल कूद का मैदान हो या जीवन का कोई हिस्सा, हर जगह हर मैदान आपको फतेह करना है। उन्होंने और भी बताया कि गर्मी से सुरक्षा कैसे करें, मई चल रहा है और भीषण गर्मी हो रही है पूरे भारत में हर जगह, और उन्होंने बताया घर में हमारे रसोई में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो गर्मी से बचने में हमें हेल्प करती हैं। उन्होंने बताया कि बस्ती के एक व्यक्ति हैं जो जलाशय की साफ सफाई करते हैं और जल को साफ करने में उनका अहम भूमिका रहा है। ऐसे सब बातों के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सबके मन की बातें करते हैं। अच्छा लगता है सेगमेंट जब हम भारत के ऐसे छोटे छोटे व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं, उनके स्ट्रगल की बात करते हैं और खुद के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। मैं हूँ आपकी आरजे जागृति, आप सुन रहे आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। टेक इट अवे।

Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. Rainbow के साथ लाइफ है रंगीन. जी हाँ, मन की बात से पहले हम बात कर रहे थे एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक, फेमस सिंगर के जी के बारे में. और आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा था. और अगर मैं उनके गाने और उनकी जीवन की बात करूँ तो शायद मेरी ये 4 घंटे का शो भी कम पड़ जाएगा. उनके गाने की लिस्ट इतनी लंबी है और सारे गाने फेमस है. सारे गाने मेरे दिल को बहुत ही करीब है. और सबके इस जनरेशन की जो भी उनकी प्यार की बातें हों, दोस्ती की बातें हों या फिर कुछ दुख की बातें हों, उन्होंने उस सारे इमोशंस को एक सुर दिया था. उनके बारे में पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि वो कभी स्कूल नहीं गए, कभी म्यूज़िक स्कूल नहीं गए. वो फॉर्मली ट्रेंड नहीं थे, उन्होंने कोई म्यूज़िक स्कूल कभी नहीं ज्वाइन किया. सब कुछ इननेट टैलेंट था. वो खुद कहते थे, मेरी आवाज़ ही मेरी सबसे बड़ी टीचर थी. वो बहुत प्राइवेट पर्सन थे, ऑलमोस्ट ज़ीरो कंट्रोवर्सी, ज़ीरो ड्रामा, बस म्यूज़िक को डेडिकेटेड उनका जीवन. आपको लगता है हिंदी में ही उन्होंने बहुत सारे गाने गाए? नहीं, हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, गुजराती में भी गाया है. और उन्होंने तेलुगु में बंगारू कोटी पिट्टा चिरिता 2007 में आई थी, ये मैसिव हिट सॉन्ग रहा है उनका. बंगाली में भी उन्होंने ऋतु पारनो घोष की फिल्म के लिए काम किया है. और ऐसे कई सारे चीज़ें हैं, कई सारे गाने हैं जो हर समय हम जैसे श्रोताओं के दिल में जगह बना के रखी है. दोस्तों, मैं जानती हूँ कि एक आर्जे की आवाज़ कई बार सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, पर कुछ बार ये ज़रूरी लगता है कि हम रुक जाएं और

लोगों को याद करें जिनकी आवाज़ ने हमारी ज़िंदगी में रंग भरा है, क्योंकि वो सिंगर नहीं थे जो सिर्फ चार्ट पे रहते थे, वो सिंगर थे जो दिल के किसी खास कॉर्नर में बसते थे, और वो कॉर्नर आज भी उनका ही है, क्योंकि सर आज भी आपका ही है। इसलिए आज इस शो में हम उन्हें याद कर रहे हैं, इस तरह कि नहीं वो नहीं रहे, बल्कि इस तरह कि वो हैं, उनके गानों में, उनकी आवाज़ में वो आज भी हैं। जैसा वो अपने गाने में कहते हैं, हम रहें या ना रहें कल याद आएंगे ये पल। जी सर, हम वो पल को याद कर रहे हैं जब आपने ज़रा सा गाया था जन्नत के लिए, जन्नत फिल्म के लिए, खुदा जाने गाया था बचनाई हसीनों के लिए, आंखों में तेरे फिल्म ओम शांति ओम, ये गाना मैं अगला बजाने वाली हूँ उनके लिए, और अजीब अजब सी फिल्म ओम शांति, दिल इबादत तुम मिले, और अलविदा लाइफ इन मेट्रो, क्या सॉन्ग है। इस गाने के साथ इनके इस सेगमेंट को हम अलविदा कहेंगे, लेकिन गाने तो हम सुनते रहेंगे सर के, और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें करनी हैं, और एक स्पेशल डे भी है जो मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगी, और अभी तो शुरू हुआ है फिर से ये गानों का सिलसिला, एंड लेट्स टेक इट अवे।

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। मैं हूँ आपके आरजे जागृति। सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वन मोर इम्पॉर्टेंट डे, दैट इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे, अ डे दैट रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग हेल्दी चॉइसेस। समटाइम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग अ पर्सन कैन से इज नॉट, आई कैन नॉट, आई कैन डू दैट बट आई कैन क्विट इट। Whether it's smoking or any form of tobacco, every step away from addiction is a step towards a healthier and happier life. Remember, good health is not something we buy, it is something we protect. So today, take a moment to think about yourself, your loved ones, and the future you want to create. Because every tobacco-free day is a victory worth celebrating. This is your RJ Jagriti on FM Rainbow 101.9, wishing you good health, positive vibes, and wonderful Sunday ahead. Take it away.

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 रेनबो, इट्स कलर टू योर लाइफ एंड आई एम योर आरजे जागृति। सो सुबह से ये म्यूज़िकल सफ़र शुरू हो चुका है। हमने कितनी सारी बातें की और सबसे इम्पॉर्टेंट डे के बारे में भी बात करेंगे, जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे। जी हाँ, 31 मई को ये डे मनाया जाता है। दोस्तों एक बात बहुत ज़रूरी है कि ये डेट सिर्फ कैलेंडर पे एक नंबर नहीं है, आज का दिन जो है वो कैसे इस चीज़ से नो टोबैको डे को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, विश्व टोबैको निर्वाण दिवस ये कहते हैं, ये दिन स्पेशली उस चीज़ के लिए है, डेडिकेटेड है, जो करोड़ों लाइफ को ख़राब कर रही है, टोबैको। ये थीम जो इस बार का थीम

0: है हमारे टोबैको डे का, वो है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। ये थीम बहुत पावरफुल है, मतलब आप पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है जागृति, थोड़ा बताओ तो सही। अनमास्क का मतलब होता है कि अनमास्क करो उस अपील को जो टोबैको इंडस्ट्री ने क्रिएट की है, क्योंकि आज का प्रॉब्लम सिर्फ सिगरेट नहीं है, अब तो ई सिगरेट हैं, वेप्स हैं, फ्रूट फ्लेवर्ड निकोटीन पाउचेस, क्या क्या नहीं आ गए। फैंसी पैकेजिंग में एडिक्शन हाइड करके दिया जाता है, बेचा जाता है, और किसको? हम आम जनता को, हमारे यंग जनरेशन को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिन 1987 में 1987 में शुरू किया था, और तब से हर साल 31 मई को दुनिया भर में ये कैंपेन चलती है। आज 150 भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेयरनेस ड्राइव्स, स्कूल प्रोग्राम्स और हेल्थ कैंप्स चल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग में एक एक आदत सी बन जाती है, उस चीज़ को मजबूर, उस चीज़ को करने के लिए। आपने कभी सोचा है कि हमारे जो भारतीय ग्रंथों पुराणों में कहा जाता है कि इंद्रियों पे संतुलित करना है, हर चीज़ को आप उस उतनी मात्रा में करो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, और एक आदत नहीं बननी चाहिए, चाहे वो नशा हो, चाहे वो कोई भी एक एक्टिविटी हो, जैसे अभी आजकल फ़ोन एडिक्शन भी एक आ गया है, ऐसी एक्टिविटी जो आपकी हैबिट बन रही है, जो आपकी डेली लाइफ रूटीन लाइफ को अफेक्ट कर रही है, क्यों कर रही है, उस पर आप प्रश्न करिए। अपने दिमाग में होने वाले उस बदलाव को ध्यान दीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, और क्योंकि आज हम वर्ल्ड नो टोबैको डे मना रहे हैं, तो हम थोड़ी और बातें इसके बारे में करेंगे कि कैसे कैसे हम खुद को रोक सकते हैं इस नशा की ओर ना जाने से। अगर आपको आ रहा है कि नहीं ये खाना है, ये पीना है, खुद को कैसे रोक सकते हैं, हम कुछ टेक्निक्स की बातें भी करेंगे, और कितने सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम भी चलते हैं इस चीज़ के लिए, उस सब की बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ऑब्वियसली गानों के साथ हम बात करेंगे एक ब्यूटीफुल सफ़र, एक जर्नी के बारे में भी। ठीक है वे,
1: ఇంటి ఖర్చులకి డబ్బులు ఇవ్వండి భర్త గారు.
2: ఇది రేషన్ కి 15,000, కూరగాయలకి 2,000.
1: మరి కరెంటు బిల్లుకు
2: 0 రూపాయలు ఎలా ఇస్తాను?
1: ఓహో, మర్చిపోయా, ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానెల్ పెట్టించాం కదా, దాంతో 4,000 రూపాయలు మిగిలాయి కదా, దాంతో షాపింగ్ చేద్దామా?
2: సరే.
3: పిఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన చేరడానికి రిజిస్టర్ చేసుకోండి pmsuryaghar.gov.in.
4: మాటైనా
5: పాటైనా
6: ఏదో ఏదో ఉంది గుండెలో తొల్లు, ఏది అర్థం కాదు పైకి చేతల్లు,
4: ఏ చోటైనా
5: శ్రోతల ఆనందాలగని
4: మధుర గానాల మనోరంజని
5: మన జనరంజని
6: మనసునే మీటకే నేస్తమా.
5: జనరంజనిలో మీకు నచ్చిన పాటను వినాలనుకుంటున్నారా? అయితే ప్రతి బుధవారం ఉదయం 9 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు మాకు కాల్ చేయవలసిన మా నెంబర్లు 0402324085, మరొక నెంబర్
6: 2324085.
5: జనరంజని, శ్రోతల మనోరంజని, ప్రతిరోజు ఉదయం 7:30 మీ వివిధ భారతి 102.8

Welcome back, listeners. You are listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. Rainbow, it's color to your life. And I am your RJ Jagruti, dost and host for the day. तो हम बात कर रहे थे नो टोबैको डे के बारे में. जी हाँ, आज 31 मई है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है. और कुछ आपको शॉकिंग फैक्ट्स बताऊँ, आप सोच में पड़ जाएंगे कि जागृति ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं भारत में. भारत के बारे में बताते हैं तो भारत में 1/3 एक तिहाई एडल्ट्स किसी न किसी फॉर्म में टोबैको यूज़ करते हैं. सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, पान मसाला में. एक सिगरेट पीने से एवरेज 11 मिनट्स ऑफ लाइफ कम हो जाती है. मतलब अगर आपने एक छोटा सा सिगरेट

दिया है तो आपके जीवन का 11 मिनट्स तुरंत खत्म हो गया है। टोबैको में 4,000 से भी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 70 ऐसे केमिकल्स हैं वो कंफर्म्ड है कि उससे कैंसरस है, उससे कैंसर्स होते हैं। इंडिया में 28.6 अडल्ट टोबैको यूज़ करते हैं और इनमें से बहुत कम लोग प्रोफेशनल्स हेल्प लेते हैं। जी हाँ, जो एक स्टिग्मा होता है कि हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, हम खुद कर सकते हैं, वो स्टिग्मा तोड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ है, कोई लत है आपके पास कि आप नहीं छोड़ पा रहे, आपने कोशिश की है, 1 महीने 2 महीने आपने कोशिश किया कि चलो अब मैं इतने दिन तक ये चीज़ नहीं खाऊंगा, ये चीज़ नहीं पीऊंगा, देखते हैं, बट आपसे नहीं हुआ, दिस इज़ ऑल राइट, दिस इज़ ऑल राइट टू सीक समवनस हेल्प, स्पेशली वेन दिस इज द इशू। कभी कभी क्या होता है, हम सारे जो खुद के बैटल होते हैं खुद नहीं जीत पाते हैं, उसमें आपके दोस्त, आपकी फैमिली, गवर्नमेंट, डॉक्टर्स, उनकी हेल्प लेना ज़रूरी होता है। और वो हेल्प इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आपके फ्यूचर रिलेटेड है, उससे आपका फ्यूचर शेप होगा। सच बताऊँ तो ये जो टोबैको है कुछ ऐसा ही है, ये जो नशा है ना, आपके मानसिक जो विचार होते हैं मस्तिष्क में, वो उस पर कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि ठीक है, हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय आपको ये चाहिए कि नहीं, टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ, नो आई हैव टू टेक दिस डिसीजन, आई हैव टू रीच आउट टू द स्पेशलिस्ट, समवन हु कैन रियली हेल्प मी टू क्विट दिस एडिक्शन। ऐसे ही हम बहुत सारी बातें करेंगे और आगे मैं बताऊंगी कि छोटे छोटे प्रैक्टिस जो हम घर में करें, उससे भी हम इन सारे नशा को दूर कर सकते हैं और एक हेल्दी हेल्दी जीवन जी सकते हैं। मैं हूँ आपकी आरजे जागृति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ और रंगीन। टेक इट अवे।

बताती हूँ, 4 सेकेंड्स का इनहेल, 7 सेकेंड का होल्ड और 8 सेकेंड का एक्सहेल करना है आपको। ये 4-7-8 टेक्निक कहते हैं, बहुत ही आसान है, आप घर पे भी कर सकते हैं। नॉर्मल सुबह उठ के कोशिश करिए जब आप उठ रहे हैं तो, अगर आपका ज़्यादा है एडिक्शन तो आप दिन में 3-4 बार, जब आपको लगे कि अभी ये क्या कुछ ऐसे नशा का करने का आपका मन हो रहा है, तो आप 4-7-8 इनहेल होल्ड और एक्सहेल का टेक्निक कर सकते हैं। तीसरा है अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई करें कि आपको किस वजह से ये सिगरेट या फिर तंबाकू खाने का मन कर रहा है, वो ट्रिगर क्या है, स्ट्रेस है, बोर्डम है या फिर कोई पीयर प्रेशर है। ध्यान रखिए आपको खुद के लिए भी जीवन जीना है, तो वो जो टेम्पटेशन हो रहा है आपको, वो जो ट्रिगर हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना है। अपने घर अपने बैग से सिगरेट को रिमूव करना, कहीं भी जहाँ आपका प्लेस है, जहाँ आप रखते हो, हटा दीजिए उसको। डॉक्टर से निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी NRT के बारे में बात करें। अगर आप खुद की मदद नहीं कर सकते तो ट्रस्ट मी, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको अपनी आत्मशक्ति का यूज़ करके खुद पे, खुद के लिए मदद करना, डॉक्टर के पास जाना, सजेशंस लेने हैं। इसको स्टिग्मा नहीं बनाना कि अरे इसको कैसे ख़त्म करना है, नहीं। चलिए एक काम करें, अगर आप खुद या आपके कोई अपने टोबैको यूज़ करते हैं तो आज के दिन एक प्रॉमिस करते हैं, नॉट अ जजमेंट, बस एक स्टेप, एक एफर्ट, क्योंकि ज़िंदगी रंगीन है और उससे रेनबो कलर्स में जीना चाहिए, रंगीन कलर्स में जीना चाहिए, किसी काली धुएं में नहीं। मैं हूँ आज जागृति, है आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और आपकी लाइफ को रंगीन कैसे बना सकते हैं, म्यूज़िक के साथ रंगीन कैसे बना सकते हैं, यही प्रयास रहता है हमारा हर दिन हर पल। लेट्स, वन वेरी एनर्जेटिक सॉन्ग इज कमिंग इन योर वे, टेक इट अवे।

Welcome back, listeners. You're listening to आकाशवाणी FM Rainbow 101.9. रेनबो के साथ लाइफ रंगीन, और हम आपकी लाइफ को और रंगीन बनाने की तो कोशिश कर रहे हैं. यही तो बता रहे हैं कि जो नशे आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं, जो आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करके रखे हैं, उनसे कैसे कैसे छुटकारा पाया जाए. तो जैसे मैं बता रही थी कि मैं बताऊंगी कुछ ऐसे टेक्निक्स जो आप अपने घर पे अपना सकते हैं, और ये बहुत ही बेसिक है. जो गवर्नमेंट ने भी कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं इसके ओर, उसमें से है आई क्विट ऐप, ये गवर्नमेंट का है, और टोल फ्री हेल्पलाइन भी है, जो मैं नंबर बताती हूँ आपको, 1800112356. फिर से बोलती हूँ, 1800112356 पे आप कॉल करें, आप उन्हें बताएं कि आपको कैसे आप नशे ने आपके जीवन को बांध के रखा है. दूसरी टेक्निक ये है कि जब भी आपको क्रेविंग आने लगे तो आप 478 ब्रीथिंग टेक्निक अपनाइए. कैसे ट्राई करना

Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. And what's color to your life? और ये कोशिश रहती है कि आपकी लाइफ का कलर और भी ब्राइट हो जाए, क्योंकि ये आ रहा है आपका फेवरेट सेगमेंट, हेलो रेनबो. जी हाँ, याद तो होगा, राइट? ये वो सेगमेंट है जहाँ हम बस एक तरफा बातें नहीं करते हैं, वहाँ हम आपकी बातों को सुनते हैं. जी हाँ, आपके मन की बातों को. और वो बातें ऐसे बेफजूल, बिना किसी विषय पे नहीं होती, हम आपको टॉपिक भी देंगे. सो आज का टॉपिक ये है कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा दोस्त है जिसने आपको आपके उन स्ट्रेस, उन दुखी दिनों में आपको बहुत हंसाया है और आपका साथ नहीं छोड़ा. मतलब जीवन में कुछ भी हो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, ये रहता था उसका मोटिव. तो आज का प्रश्न यही है कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपको जीवन के हर मोड़ पे, जब आप दुखी थे, आपको हंसाया है. तो नंबर बता देते हैं, हमारा नंबर है 0402323-0030. एक नंबर और है 0402323-4821. एक नंबर और भी है, वो है 0402970-4715. जी हाँ, अब होंगी बातें दो तरफा, गानों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ. और वन ब्यूटिफुल सॉन्ग इज कमिंग अवे, दैट इज बाय अरिजीत सिंह, पल. टेक इट अवे.

0: Hallo Sir, Shahid. Hallo? हेलो, उनसे हमारी कनेक्शन नहीं हो पा रहे। आप कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें, शायद हमारा जो लाइन है वो बिजी है, उसकी वजह से कुछ इशू आ रहा है। फिर से देखते हैं। हेलो
1: हेलो मैडम
0: हेलो,
1: जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जागृति जी ना?
0: हाँ सर, जागृति बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर।
1: या मैडम, आई एम श्रीनिवास राव फ्रॉम मलकपेट। मैडम, तो
0: जी सर, बोलिए।
1: आपका टॉपिक क्या है?
0: मेरा
1: आपको
0: टॉपिक आज का है सर कि आपके जीवन में एक कौन सा दोस्त ऐसा है जो अगर आप दुखी रहें थोड़ी देर के लिए तो आपको हंसा देता है, मतलब आपको दुखी रहने ही नहीं देगा। वो जीवन के जो भी आपकी जिंदगी में एक भी पल है, आप कहीं दुखी हो गए तो आपके साथ आके हाथ पकड़ के कहता है, अरे दुखी क्यों रहना है? वो दोस्त कौन है?
1: मैडम जी, आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है। तो
0: जी सर।
1: मेरा क्लासमेट एक है था, वी आर क्लासमेट फ्रॉम 1963 टू 65, सॉरी 64 टू 66 तक हम लोग क्लासमेट थे।
0: हाँ सर।
1: बाद में हमारे घर के बाजू में रहता था, उसीलिए दोस्तानी और बढ़ गई थी। तो होता इतना दोस्तानी थी, कुछ मत 40 साल का, 50 साल का दोस्तानी है हमारी था। तो
0: बहुत ही सुंदर।
1: या तो इन ईयर ऑफ जब करोना आया ना मैडम, करोना
0: हाँ
1: में द कोलोबस कोलैप्स,
0: हाँ ओ सर,
1: उसके उतना अच्छा दोस्त मेरे को अभी तक कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिलेगा बोल के भी मेरे को आइडिया है।
0: समझ सकती हूँ
1: इसके
0: सर।
1: बारे
0: सर
1: में मेरे को 1,000 दोस्त जो भी होंगे,
0: जी सर,
1: बट इन दैट ऑल दोस्त थिंग्स ऑल्सो, जब जब मिलना, जब बात करना, सब अच्छे दोस्त हैं। बड़े तो दोस्त अपने को काम करते हैं, सब करते हैं, सभी भी अपने को अच्छा देखते हैं, मगर नॉट शो दैट मच ऑफ इंटीमेसी दैट फेलो वाज शोन। क्योंकि मेरे को बाईपास हुए, जब भी मेरे साथ में था, मैं डिस्चार्ज करे जब मेरे घर तक, मैं बच्चा बोला नहीं पापा अपन हाईटेक सिटी में जाएंगे, वहीं रहेंगे, तुम्हारे घर को आए तो बहुत लोग आते हैं, इसलिए मैं घर को लेके जाता हूँ, वहां से स्विचेस रिमूव करे जब आप, तुम्हारे को उधर से उधर छोड़ देते हैं बोले। तो इवन ऑन दर्दे नक्कोरे नहीं आ, नक्कोरे कई को आता, फिर अकेले जाना होता, अरे क्या होता, अरे मैं आती हूँ रे बोलते, घर तक आके छोड़ के करके पूरा मेरे को ये दे के एडवाइस दे के, कभी
0: जी
1: मेरे को कभी भी उन्हें बहुत ही अच्छा एडवाइस देता था। उन्हें मेरे को उन्हें भी एडवोकेट था, उन्हें
0: हाँ
1: बोलता था मेरे को, अरे फाइव ईयर का इंटरमीडिएट के बाद में भी कर सकते रहे, फाइव
0: हाँ
1: ईयर का सब्जेक्ट
0: सर सर
1: लेवल के बोल क्या बोला था, तो
0: हाँ
1: उसके बाद हम बराबर नहीं सुने समझो।
0: हाँ
1: तो
0: सर, एक एक
1: क्लास
0: रिक्वेस्ट है आपसे।
1: में
0: आप
1: या
0: अगर आपके आसपास रेडियो है तो उसे थोड़ा दूर होके बात करें, क्योंकि उसका
1: हाँ
0: आवाज़ अभी भी साउंड इको हो रहा है, लाइक वापस से आ रहा है। तो अगर आसपास आपके रेडियो, थोड़ा से दूर होके कॉल करें।
1: नहीं, निकाल दिया, बंद कर दिया
0: हाँ
1: हमने।
0: हाँ अभी सही आ रहा है सर।
1: या माँ, तो ऐसा दोस्त मेरे को अब तक फिर अभी वैसा टाइप ऑफ दोस्त नहीं मिला मेरे को।
0: जी
1: हम
0: सर।
1: लोग 5 लोग दोस्त थे, तो उसमें से 2 गुजर गए, एक अभी भी साकेत में है, एक
0: हाँ,
1: विजयवाड़ा में रहता है, अभी भी हमारा दोस्तानी कंटिन्यूशन है।
0: बहुत ही अच्छा लगा
1: सिक्सटी
0: आपसे
1: सिक्सटी
0: बात करके।
1: फाइव ईयर्स का
0: आपके
1: दोस्तानी
0: जी
1: सिक्सटी
0: सर,
1: फाइव ईयर्स का दोस्तानी चल
0: सिक्सटी
1: रही है
0: फाइव
1: मैडम।
0: ईयर्स तो समझ सकती हूँ सर। दोस्ती चीज़ ही ऐसी है कि वो साल नहीं गिने जाते, उसके मूमेंट्स गिने जाते हैं। जी सर,
1: यस
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके दोस्तों से बात करके। ऐसे ही हमसे बात करते रहें। थैंक
1: थैंक यू माँ,
0: यू
1: थैंक यू
0: सर,
1: वेरी मच माँ, ऐसे आते जाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछते जाइए,
0: थैंक यू सो मच
1: हम
0: सर।
1: आंसर देंगे।
0: जी
1: यू
0: सर,
1: मोस्ट वेलकम टू द शो, थैंक
0: या
1: यू माँ वंस अगेन, थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच सर। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे आपने, सुना हमारे साथ? मैं तो उनको सुने ही जा रही हूँ। मतलब वो बता रहे हैं कि उनकी दोस्ती 65 साल की है। आप इमेजिन कर सकते हो, यहाँ लोग आज के इस जेंजी दुनिया में, मैं बात करूंगी, अगर एक मैसेज का रिप्लाई 2 मिनट लेट हो जाए, 2 मिनट नहीं 2 सेकेंड लेट हो जाए, उनको लगता है अरे ये दोस्ती रही ही नहीं गई, अरे ये तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अरे शायद ये इनको कोई नए दोस्त मिल गए। लेकिन मुझे ये लगता है दोस्ती ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें हमेशा मिलना, हमेशा बातें करना, ये ज़रूरी नहीं है। आपको पता आप उनके दोस्त हो, उनको पता आपके दोस्त हो, उसको भी ज़िंदगी जीने दीजिए, खुद भी ज़िंदगी

और जो मोमेंट आपको मिल रहा है, अगर वो 5 मिनट अवेलेबल है तो 5 मिनट उससे अच्छे से बात करिए। वो बोले ना, 40 साल की दोस्ती ऐसे नहीं चली, 65 साल की दोस्ती ऐसे नहीं चली जहाँ वो रोज मैसेजेस पे बात करते हैं। डेफिनेटली वो दो दो तीन तीन साल बाद मिलते होंगे, लेकिन जो उनके आपस का जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो विश्वास है, जो जो जो आत्मविश्वास है एक दूसरे पे, वो बना रहता है सालों सालों तक। जी हाँ, ऐसे ही हम और भी बातें करेंगे, गाने भी सुनेंगे। और जब गानों की बात आती है तो मैं ये सोचती हूँ कि ये सेगमेंट में मैं कैसे गाने बजाऊँ, थोड़े एनर्जी वाले बजाऊँ या फिर बहुत फेमस वाले बजाऊँ। हम आपकी फरमाइश भी लेंगे इन गानों, इन फ़ोन के थ्रू। अरे एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, हमारा व्हाट्सअप नंबर। अगर आप बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है और मैं भूल गई बताना कि अरे हमारा तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप भी है, जहाँ पे अगर आप हमें कॉल नहीं कर सकते हैं, किचन में बिजी हैं या फिर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, लंच कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। हमारा जो इंस्टेंट मैसेजिंग या व्हाट्सएप है वो है 4023234822। एक बार फिर से बोलती हूँ, 4023234822। ये है हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग। कॉल का तो आपको पता ही है, हम ऐसे ही बातें करेंगे गानों के साथ। आमी आज जागृति, यू लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो, इट्स कलर टू योर लाइफ, टेक इट अवे।

वेलकम बैक लिसनर्स, हमारा हेलो रेनबो शुरू हो चुका है आपके कॉल्स। और फिर से एक बार नंबर बता देती हूँ, शायद अगर आपसे मिस हो गया हो तो, 0402323 0030 एक और नंबर है, 0402323 4821 एक और नंबर भी है, 0402970 4715। याद रखें 404, ये हमारे स्टेशन का कोड है, तो इसको डालना मत भूलिए। कितनी सारी बातें हो रही थी और हमारा टॉपिक तो याद है ना, आज का टॉपिक है कि आपके जीवन का एक दोस्त कौन सा है जो जब भी आप दुखी रहते थे उस मोमेंट में आके आपको एक एनर्जी देता था, पॉजिटिव एनर्जी देता था कि जीवन से दुखी नहीं रहना है। ये तो कहा जाता है सुख और दुख विलोम नहीं जीवन के पर्याय हैं, वो जीवन के हिस्सा हैं। वही दोस्त जिसने आपको इन दोनों दुख और सुख के बीच में एक ब्रिज दिया, वो दोस्त जो हमेशा आपको खुश रखा, यही है टॉपिक आज का। और हेलो रेनबो में हम इसी पे बातें भी करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और गाने भी सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 1.9 एंड हमारा ब्यूटीफुल सेगमेंट हेलो रेनबो स्टार्ट हो चुका है. देखते हैं कौन है कॉल पे. हेलो रेनबो सर. हेलो रेनबो.
1: हेलो मैम.
0: हेलो रेनबो, आप कहाँ से बात कर रहे हैं.
1: जी मैम, मैं अमित पेट से बात कर रहा हूँ.
0: आपका नाम क्या है.
1: मेरा नाम आदर्श मिश्रा है.
0: जी आदर्श, आप बताइए आप आज के टॉपिक.

0: सुने हैं आप?
1: जी, मैं सुबह से सुनते आ रहा हूँ। पहले के गाने सुने मैंने, बहुत अच्छे लगे मुझे।
0: हाँ, अच्छा
1: और अभी जो आपने रिसेंटली गाना चलाया, तू तू है, वही
0: जी
1: वो तो
0: जी
1: मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है।
0: जान के
1: और
0: बहुत अच्छा लगा।
1: मजे की बात यह है कि मैं अपने दोस्त इंद्रजीत के साथ ये गाना यहाँ पार्क में बैठे सुन रहा हूँ।
0: वो बहुत अच्छा। और आज का टॉपिक भी दोस्ती है, क्या कोइंसिडेंस रहा है आज का।
1: जी मैम,
0: तो बताइए, आप उस दोस्त के बारे में बताइए, और वो कोई एक मोमेंट भी शेयर करिए जहां आप बहुत लो थे और आपके दोस्त ने आपको एक एक अच्छा सा पॉजिटिव वाइब देके खुश कर दिया।
1: तो रिसेंट की बात है, मैंने एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और अनफॉर्चुनेटली वो इंटर्नशिप मैं क्रैक नहीं कर पाया था। उस
0: ओके।
1: टाइम पे मैं बहुत लो फील कर रहा था। उस टाइम पे मेरे दोस्त ने मेरी काफी मदद की थी, तो वो मोमेंट हमेशा याद आता है जब मैं काफी शांत बैठा था, मैं अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पता चल गया था कि मैं फील क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली किस चीज से जूझ रहा हूँ। तो वो पॉइंट पे उसने कुछ नहीं किया, वो बस जस्ट आके मेरे पास बैठ गया। हम 1 घंटे शांति से बैठे थे बिना बिना कुछ बोले, और उसके बाद हम उठ के चले गए। मतलब हमने बात भी नहीं की, हम दोनों कॉलेज से घर चले गए। लेकिन उस मोमेंट पे कुछ ना कह के भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई थी।
0: यही तो दोस्ती है, यही दोस्ती
1: जी,
0: है।
1: और वही सेम आज जो गर्मी गर्मी बहुत है, तो अपन यहाँ पार्क में बैठ के गाने सुन रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे गाने, तो एक टाइम पास अच्छा हो जा रहा है यहाँ
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आदर्श जी। आपने अपने दोस्ती के वो लम्हे हमारे साथ शेयर किए हैं जो बहुत ही अमूल्य हैं। मतलब यही तो है दोस्ती, यही है कि आप बिना बात किए भी दूसरों की बातों को समझते हैं, बिना बोले ही एक दूसरों के भावों को समझते हैं। यही है दोस्ती का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे रेनबो में कॉल करने के लिए। आपका दिन शुभ हो, ऐसे ही सुनते रहिए।
1: आपका भी मैम।
0: थैंक यू सो मच। कितनी सारी बातें की हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि उन्होंने बताया कि एक मोमेंट था जब हम वो इंटरव्यू का कुछ हुआ और वो सेलेक्ट नहीं हुए, वहाँ दोस्त ने आके बस साथ बैठा था। वो साथ बैठने से ही उन्हें खुशी हुई, बिना बोले ही अनकही बातें कही जाती हैं, और यही तो है दोस्ती। जी हाँ, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने और मैसेजेस भी देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे आ रहे हैं जो अभी हैं। जागृति जी, आपका म्यूजिक सिलेक्शन सच में बहुत खूबसूरत है, होता है। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ होंगी। हम आज का हाँ, आज का टॉपिक है दोस्त। कभी कभी लगता है कि नेचर से बड़ा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। अगर दिल उदास हो तो उससे महसूस कर लो, अगर खुश हो तो उसके पास चले जाओ, क्योंकि प्रकृति के बिना कुछ कहे भी समझ लेती है। वैसे मेरी जिंदगी में दो दोस्त बहुत खास हैं, एक नेचर और दूसरी मेरी माम। वाह, क्या बात है, क्योंकि दोनों में एक बात सेम है, खुद खामोश रहते हैं पर हमें हमेशा सुकून देते हैं। ये है जयदीप का मैसेज है मेहंदीपट्टनम से। जयदीप जी ने आपने बिल्कुल सही कहा, स्पेशली नेचर और मॉम के बारे में। मतलब ये दोनों ऐसे हैं कि आप अगर गुस्से में जाओगे ना तो भी वो समझ जाएंगे, आप बोलिए मत, आपके चेहरे के हाव भाव से वो समझ जाते हैं कि ये कौन है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मॉम और नेचर, मैं यही कहूंगी कि हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब आप नेचर से कनेक्टेड होते हैं और नेचर लैप ऑफ नेचर में रहते हैं, महसूस करते हैं। एक और कॉलर्स हमारे लाइन पे हैं, देखते हैं कौन है वो। हेलो रेनबो।
1: हेलो रेम्बो, गुड आफ्टरनून आदाब जागृति जी
0: गुड आफ्टरनून आदाब सर।
1: जी शेर खान बोल रहा हूँ तलापकट्टा अमन नगर से, और मेरा सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को आपको प्यार भरा सलाम आदाब। अल्लाह से दुआ करता हूँ आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हेल्दी रखे।
0: जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। आज का टॉपिक, हेलो रेनबो का टॉपिक है कि एक कौन सा ऐसा दोस्त है जब आप दुखी रहते हैं तो आपको हंसा देता है।
1: वैसे तो दोस्ती एक बहुत बड़ा मैटर, सबसे आला और अफजल जो है दुनिया में है तो वो है दोस्ती।
0: जी सर,
1: और जी, और दोस्ती होना चाहिए निभाने वाली दोस्ती, और दो तरफा होनी चाहिए, वन साइड नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सर।
1: जी, और दोस्ती हमारे सादगी, हमारे जीवन में सादगी होना चाहिए, बिना लालच बिना मतलब के दोस्ती को निभाना चाहिए।
2: जब हम किसी से दोस्ती कर ले तो हमारे अंदर एक समाधि बना के एक लालच और मतलब को उसमें दफन कर देना चाहिए, ताकि वो दोस्ती के बीच में कभी

0: दरार ना बने।
1: बिल्कुल सही कहा, कितनी अच्छी बातें कहा आपने।
0: जी। और हमारी हमारे अच्छे आमाल, हमारे अच्छे कर्म हमको अल्लाह से, भगवान से भी मिला देते, दोस्त बना देते, और अल्लाह को भी दोस्ती बहुत पसंद है। हम अपने इतने अच्छे आमाल करेंगे तो हमारा अल्लाह भी दोस्त बन जाता है हमारा, जो हमारी फिर दुआओं में, प्रेयर में एकदम कामयाबी होती है, कुबलियत होती है।
1: बहुत सही बातें कही आपने एक्चुअली।
0: जी, तो ऐसी दोस्ती होना चाहिए कि दोस्तों को खुशी में भी और गम में भी, सुख में दुख में हर वक्त खड़े होना चाहिए, बिना लालच बिना मतलब के, और दोनों साइड से दो दो तरफा दोस्ती होनी चाहिए, निभाने वाली दोस्ती होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही, दोनों तरफ से दोस्ती निभाई जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। एकदम सही कहा आपने।
0: हाँ बिल्कुल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शेर खान जी, आपने कॉल किया, आपने पूरी एक दोस्ती का ना पूरा भूमिका से लेके पूरा एक जर्नी बताया कि दोस्ती मतलब क्या है, उसका एक असली मीनिंग क्या है।
0: बहुत आला, बहुत सबसे बड़ा रिश्ता है दोस्ती
1: जी
0: का। हम
1: सर,
0: तो मम्मी पापा भाई बहन कोई भी फैमिली के साथ
1: जी
0: दोस्ती
1: सर,
0: वाला रिश्ता होना चाहिए, ताकि हम खुली किताब की तरह एक दूसरे को समझ सके, कोई किसी से हिचके ना, कोई किसी से डरे ना, कोई किसी से कोई कुछ ना इत्तेफाकी ना रखे, ऐसे खुल के रहना, दोस्ती वाला रिश्ता होना चाहिए, और बाहर हो या घर में हो दोस्त ये, और लेकिन सादगी वाला होना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो रेनबो में कॉल करने के लिए शेर
0: एकदम।
1: खान
0: जी, एक दोस्ती पे ही गाना है, अगर आप प्ले कर दिए तो,
1: जी सर, बताइए मैं लिख लेती हूँ।
0: खुदगर्ज फिल्म का नाम है, खुदगर्ज। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है
1: कुछ भी
0: दोस्ती,
1: नहीं रहता,
0: जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती
1: बिल्कुल
0: का नाम जिंदगी।
1: खुदगर्ज मूवी का है, कुछ भी नहीं रहता। ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे, अगर हमें वो गाना मिला तो जरूर बताएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, खुदा हाफिज
0: शुक्रिया,
1: सर।
0: आप बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही खुश रहिए,
1: थैंक
0: आबाद
1: यू,
0: रहिए, और कामयाबी आपकी कदम चूमे हमेशा।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखते हैं और कौन है लाइन पे। हेलो रेनबो, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो रेनबो,
0: हेलो
1: हेलो रेनबो,
0: हेलो रेनबो, आप कौन बोल रहे हो? जागृति?
1: हाँ जागृति बोल रही हूँ मैम, आपका नाम?
0: ओके ओके, नहीं मैंने आपका अभी सुना ना, इसमें मेरा नाम सुषमा है।
1: हाँ मैम, मैम आज का टॉपिक ये है कि कौन से ऐसे दोस्त हैं जो आप।
0: हाँ, जो दोस्ती के बारे में आप बोल रहे हैं ना, तो
1: हाँ
0: एक बात बोलती, क्योंकि देखिए अभी हम जिस जिस उम्र में रहते हैं ना, बचपन में, बीच में, फिर अपने युवा अवस्था, फिर उसके बाद थोड़ा
1: हाँ
0: यंग एज में रहते ना, तो दोस्तों ऐसे लगते कि अरे हाँ ये मेरा सच में दोस्त है, लेकिन सच में कोई दोस्त नहीं रहता। आपको
1: हाँ
0: पल भर के लिए मिल सकते, एक बात बोल रही मैं, लेकिन जब आप करेक्ट आप कनेक्शन करोगे ना, तो जो कृष्ण भगवान है, देखिए
1: जी सर, जी मैम,
0: जिसने सारी गीता और रामायण लिखी ना,
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: कृष्ण से दोस्ती करोगे ना, तो आपको सही मार्ग भी मिलेगा और दिशा भी मिलेगी कि यहाँ पे है क्या असल, ये सब माया जाल है मालूम। दोस्ती सही है अगर हम करेक्ट रहते, लेकिन वहां वो इंसान गलत रहा, तो अगर सही इंसान पे वो क्या बोलते हैं, बिलीव नहीं कर सका, तो कितना दुख होता ना। जरूरी
1: सही,
0: है क्या? एक बात बोलो, एक दोस्त से दोस्ती करके दुख उठाना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। अगर आप सही हो ना, तो अपने आप से दोस्ती करो, मैं तो ये बोलूंगी।
1: जी
0: हाँ
1: मैम
0: ये बात
1: एकदम
0: सही है कि नहीं, एक बात सुनो जागृति, मैं क्या बोलना चाह रही, ये ऑन एयर है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपके साथ में है आपके भाई बहन, तो वो भी एटलीस्ट रहेंगे भाई, जितना साथ देना है देंगे, लेकिन जितना आप अपने साथ रहोगे ना, वो करेक्ट साथ रहेगा आपको। यहाँ कोई किसका मदद नहीं करता मालूम, अभी हर जगह धोखा ही है, हर जगह धोखा है। आपको धोखा उठाने के बाद मालूम पड़ेगा कि आप कितना टुबके निकले होंगे।
1: सही
0: सही बोल रही,
1: सही कह रहे हैं सर
0: क्योंकि
1: मैम, आप
0: नहीं,
1: एकदम सही कह रही हैं कि दोस्ती
0: हाँ
1: में
0: ये
1: सीखने को भी
0: नहीं,
1: मिलता है।
0: कभी
1: या
0: हम गीता नहीं, गीता में हम जब पढ़ते हैं ना, कृष्ण से हम जुड़ते हैं ना, तो हमको मालूम पड़ता कि सच में उन्होंने कितना करेक्ट लिखा, कि ये सब माया जाल है। यहाँ पे क्या है, अपन शन भंगुर के दोस्त है मालूम। हाँ इतना है, आपकी नीयत अच्छी रखो, कहीं ना कहीं वो भगवान ही आपको अच्छा रखेगा, लेकिन सबकी नीयत अच्छी नहीं रहती, ये बात सही है मालूम। आज कितने अच्छे लोग देखो ना, के हो रहे मालूम, दोस्ती में ही हो जा रहे मालूम, वो फायदा क्या है?
1: जी मैम,
0: ऐसे
1: जी मैम,
0: नहीं, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो भाई, जो
1: जी
0: आपकी धोखा देंगे और आपकी जान ही ले ले, ऐसी दोस्ती काहे को भाई।

0: एकदम
1: आप
0: सही कहा हम।
1: अच्छे रहो। नहीं
0: एक
1: अभी देखो मैं क्या हूँ, मैं बोलती हूँ हट जाती, बस बात खत्म। मेरे अंदर इतना नहीं रहता, लेकिन दूसरे के अंदर क्या है मेरे को क्या मालूम। इसलिए बैठ के देख के रहना ना, जब अपना दिल साफ है। अभी मैं क्या हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कर सकती, सही बोल रही। हाँ अभी उसके डबल मदद कर दूंगी मैं उसकी, लेकिन
0: जी
1: कभी
0: मैम।
1: गलत नहीं कर। लेकिन ऐसे इंसान को तो देख के रहना पड़ेगा ना,
0: एकदम सही कहा मैम
1: जरूरी है,
0: आपने।
1: जरूरी है। अपन जब अच्छे हैं, अपन अपने आप को 100% देते ना, तो अपने आप को देख के संभल के रहना है। आजकल की
0: एकदम
1: दुनिया ये है,
0: एकदम
1: मैं तो यही
0: सही कहा
1: बोलती। नहीं
0: आपने।
1: मैं तो यही बोलती, क्योंकि मेरे मेरे माँ बाप बोलते थे, लेकिन जब मेरे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आ गया। सही
0: जी मैम
1: बोल रही, क्योंकि
0: जी।
1: आदमी को धक्का लगता ना तो कभी अक्कल आती मालूम।
0: जी मैम
1: इसलिए
0: बहुत
1: जरा बच के, आजकल के बच्चे क्या है, सेलफोन पे उसमें इसमें दोस्ती कर ले रहे। अरे मेरा दोस्त वो है, असल बकवास है मालूम। दोस्ती कुछ भी नहीं है मालूम। हाँ कोई एक रह सकता आपका दोस्त, बोल नहीं सकते
0: जी
1: सब लोग
0: मैम
1: ऐसे ही रहते बोल के,
0: जी
1: मैं
0: मैम
1: ऐसा नहीं बोल रही। लेकिन वो एक कौन होगा, जैसे कृष्ण भगवान की तरह,
0: जी
1: एक
0: मैम
1: बात
0: एकदम
1: बोल
0: सही
1: रही,
0: कहा आपने।
1: कृष्ण भगवान की तरह रहेगा तो वही सच में मदद कर सकता और दुनिया को संभाल सकता मालूम।
0: जी मैम
1: बाकी
0: बहुत
1: हाँ बाकी कुछ भी नहीं है।
0: या
1: हाँ
0: मैम आपने
1: आप है, अगर आपको लगता कि किसी की मैं मदद कर दूँ, कर दो हट जाओ।
0: जी
1: और
0: मैम
1: मुझसे डीपली डीपली बिहेवियर मत रखो, डीपली किसी के साथ भी मत रखो, क्योंकि आप जब मदद नहीं कर सकते तो काय को ये करना बोले।
0: जी सर मैम एकदम एकदम सही
1: फालतू
0: कहा
1: फालतू
0: आपने।
1: की वो नहीं करना, और अपन भी परेशान नहीं होना, दूसरे को भी परेशान नहीं करना। मैं तो यही बोलूँ,
0: थैंक यू
1: समझ
0: सो
1: जाओ।
0: मच।
1: हाँ
0: थैंक यू
1: थैंक यू, आपने मेरे को टाइम दिया, थैंक यू सो
0: या
1: मच।
0: बहुत
1: अच्छा जयश्री जी आई क्या?
0: नहीं
1: आज जयश्री जी
0: यार
1: आई क्या?
0: संडे है वो सैटरडे को आते हैं। नहीं
1: नहीं आज कौन है आपके साथ, कौन है? नहीं
0: मैं जागृति हूँ मैं ही कर रही हूँ शो के लिए।
1: आप जागृति नहीं, अभी अभी उन्हें जाए कुछ नाम बोल रहे थे ना, तो दो दो आरजे आए संजीता
0: नहीं
1: जैन
0: नहीं
1: को
0: नहीं
1: लेके।
0: नहीं आज अकेले अकेले ही शो कर रही हूँ। आज ही
1: ओके
0: जाते हैं
1: ओके,
0: ट्रायल
1: गुड
0: ड्यूटीज में
1: गुड
0: जी सर।
1: गुड, बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं आप।
0: थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो
1: चल
0: मच।
1: शांति
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग इन
1: से
0: रेनबो।
1: सांस दीजिए। थैंक यू थैंक यू।
0: थैंक यू थैंक यू। कितनी सारी बातें होती हैं मतलब दोस्ती के लिए। आपके थोड़ी खट्टे मीठे जो आपकी मेमोरीज होती हैं वो बता रहे थे कि दोस्ती एक तरफा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही एक तरफा नहीं होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें लगता है हम एफर्ट्स डाल रहे हैं सामने वाले नहीं डाल रहे हैं तो बिल्कुल वो दोस्ती नहीं है। जब एफर्ट्स दोनों साइड से हो तो ही दोस्ती है। लेकिन वो एफर्ट कैसा है ऐसा तो नहीं इंसान बिजी है बहुत ज्यादा काम में बिजी है और वो समय नहीं दे पा रहा तो उस इंसान के उस व्यस्तता को भी समझना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा कि कृष्ण जी हाँ जब मित्रता की बात आती है तो हमारे पौराणिक कथाओं में और हिंदू स्क्रिप्चर्स में सबसे पहले जो नाम आता है वो भगवान श्री कृष्ण का आता है और उनकी मित्रता जो सुदामा के साथ थी वो उसका एक उदाहरण दिया जाता है हमेशा। बहुत सारे कॉलर्स लाइन पे हैं देखते हैं अभी कौन है क्योंकि अगर बात नहीं होगी तो फिर ये रह जाए। हेलो हेलो शायद इनसे हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। सर आप फिर से कोशिश कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारी लाइन बिजी है और आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। कितना अच्छा लगता है जब हम दो तरफा बात करते हैं दो तरफा बातें शेयर करते हैं अपने मन की बातों को बताते हैं। और आज का टॉपिक ही कुछ खास है आज का टॉपिक ही बहुत अच्छा है। हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं हम वो भी पढ़ेंगे बात भी करेंगे गानों के साथ। यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ लाइफ रंगीना में वाजे जागृति टेक इट अवे।

0: श्वेता,
1: एकदम सही कहा
0: मेरे
1: सर आपने।
0: ये मेरे बहुत अजीज दोस्त है मुनीर भाई, मुनीर अली जी,
1: जी सर,
0: वो भी आपको फोन करते रहते, आपको भी मैसेज करते रहते,
1: हाँ हाँ
0: बहुत
1: सर,
0: अजीज दोस्त है मेरे
1: हाँ
0: मुनीर
1: हाँ
0: भाई, और ऐसे सच्चे दोस्त रहना मैडम, एक दोस्त दोस्त रहना, अच्छे रहना, ज्यादा नहीं रहना, ऐसा
1: ठीक
0: इतना ही
1: है।
0: कहना था मुझे।
1: हाँ, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, हेलो
0: शुक्रिया
1: लोरेन।
0: मैडम, आप टीम

0: తెలుగులో చెప్పొచ్చా?
1: हाँ चलेगा सर, मैं समझ सकती हूँ, बट मैं बात नहीं कर सकती, बट समझ सकती हूँ मैं, आप बताइए।
0: तो उससे पहले तो आपका शुभ का आप आपका शुभ नाम जानना चाह रहा हूँ।
1: जागृति।
0: जागृति? अबा बाबा बाबा, हमारा जागृति कर दी है आप।
1: हाँ
0: అయితే ఒకటి ఏంటంటే, స్నేహం అంటే ఇప్పుడు మంచి స్నేహితుల కోసం చెప్పమన్నారు కదా.
1: సార్, హా సార్.
0: అయితే చెప్పమంటే, నా మంచి స్నేహితురాలే నా భార్య అయిందండి. అర్థమైందా? మేరా అచ్చా దోస్తి మేరా వైఫ్ బనీసి హై.
1: बिल्कुल सर, जीवन साथी में भी दोस्त होते हैं, एकदम सही कहा आपने।
0: पहले से भी हम दोस्त थे, फिर बाद में हम शादी करके अभी भी उससे पहले से भी बहुत बढ़िया दोस्त बने हैं. और అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే, యాక్చువల్ గా స్నేహితులు అంటే ఏంటంటే, దోస్తి బోలుతో ఎక్ అయినా కదా సరైనా జాగృతి ది
1: जी
0: క్యా
1: एकदम
0: తో
1: सही कहा
0: ట్రాన్స్
1: आपने।
0: ట్రాన్స్పరెంట్ అయినా చాయే. ఔర్ ఏక్ అపన్ సోచతే కి ఆగే వాలా దోస్త్ మేరే కో యే ధోకా కరే వో కరే బోలుతో. అప్నే కో ఏక్ కహావత్ హై సంస్కృత మే, యద్ భావం తద్ భవతి. అపన్ జో దేతే వహీ అప్నే కో పలట్ కే ఆతా హై జాగృతి జీ. ఏ తో మే మాన్తా హూ, జిందగీ భర మాన్తా హూ. या दोस्ती का जगह हो दो, या फैमिली के जगह हो दो, या अपन कुछ बिजनेस के जगह हो दो, या कुछ जॉब करने हो दो, अपन जो देते वो ही अपने को मिलता है. ये तो मैं 100% मानता हूँ. और दोस्ती ऐसी चीज है कि अपन माँ बाप को अपन अपन नहीं सुनते, भगवान अपने को माँ को और बाप को और सिबलिंग्स को देता है. मगर अपने को एक चॉइस रहता है कि जिंदगी में अपन खुद अपन दोस्त को चुनते हैं. समझ में आया जाकृति?
1: जी सर, जी सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। मैं सुन रही
0: आप
1: हूँ आपको बहुत ही अच्छे से,
0: मैं
1: और आप बता रहे हैं कि कैसे आपकी जीवन साथी आपका दोस्त बने।
0: अरे क्या है अपन जिंदगी में, क्या है हर एक चीज अपने भगवान देता, मगर दोस्त सिर्फ दोस्त को अपन चुनते. बस
1: जी,
0: अपन
1: एकदम
0: सेलेक्ट कर
1: सही
0: लेके
1: कहा।
0: अपन दोस्ताना करते हैं. बस वही कहना चाह रहा था. और एक अगर हो सके तो बोले ओ बोले, अमिताभ बच्चन का
1: ओ
0: और
1: भोले
0: अमजद खान
1: सॉन्ग
0: का.
1: सर,
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: वो बोले.
1: एक्चुअली क्या है, समय की थोड़ी पाबंदी है और हमें अभी जाना
0: नो
1: भी,
0: नो प्रॉब्लम, नो
1: तो
0: प्रॉब्लम.
1: अगले शो
0: आप
1: में मैं आपका कोशिश करूंगी गाना जरूर बजाऊं, मैं लिख के
0: ओके
1: रखती
0: ओके
1: हूँ।
0: ओके ओके. हैव ए ग्रेट डे. थैंक
1: थैंक यू,
0: यू वेरी मच.
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। कितनी अच्छी बातें करते हैं। कहते हैं कि जन्म के साथ हमें सारे रिश्ते मिल जाते हैं, बट कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें खुद बनाने होते हैं, उसमें से एक है दोस्ती। जी हाँ, आपके मम्मी पापा भाई बहन जन्म लेते ही बन जाते हैं, बट दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो विश्वास से बनता है, जो आप खुद बनाते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन क्या होता है ना, समय इतना जल्दी जाता है कि 10 से 2 कैसे होता है हमें पता ही नहीं चलता। आपसे बातें, आज के बारे में बताना, आज के स्पेशल डे के बारे में अवेयर करना, आपको ट्रिक बताना, टिप्स बताना, और गाने साथ साथ सुनना, और आ जाता है हमारा हेलो रेनबो। इतनी सारी बातें, इतने सारे इमोशंस, सुनते सुनते समय कब हो जाता है पता नहीं चलता। स्टूडियो क्लॉक में टाइम है 1:55:12, और अभी कुछ मैसेजेस हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करूंगी। दिस इज अवनीश फ्रॉम उत्तर प्रदेश। रिगार्डिंग टूडेज टॉपिक, आई हैव फ्रेंड हु वॉज माई स्कूल मेट। वी नेवर रियली टॉक्ड इन स्कूल, बट इन 2017 वी रिकनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया आफ्टर मूविंग टू डिफरेंट सिटीज फॉर हायर स्टडीज। सिंस देन शी हैज़ बीन वन ऑफ माई क्लोजर फ्रेंड ड्यूरिंग सम वेरी डिफिकल्ट फेजेस ऑफ माई करियर। शी ऑलवेज अंडरस्टूड दैट आई वॉज गोइंग थ्रू, मोटिवेटेड मी एंड सपोर्टेड मी इन अचीविंग ड्रीम्स। सरप्राइजिंगली पार्ट इज दैट वी हैव नेवर मेट आफ्टर स्कूल येट। आई डोंट थिंक आई विल एवर मेट। थैंक यू अवनीश फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। बहुत सारे, कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम मैसेजेस नहीं पढ़ पाते हैं, और अगर कुछ मैसेजेस छूट जाते हैं तो उसके लिए क्षमा। अभी है आपसे विदा करने का, और किस और थोड़ा सा है जो एक और मैसेज पढ़ लेते हैं। मौन के केवल 2 अर्थ हैं, या तो बंदा कुछ नहीं जानता, या फिर बंदा सब कुछ जानता। बहुत सही। अगर कोई इंसान शांत है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे कुछ आता नहीं है, इसका मतलब है उसको बहुत कुछ आता है। अभी टाइम है आपसे विदा लेने का। स्टूडियो क्लॉक में टाइम है 1:56। बातों के साथ समय कब बीतता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और हमारे जो अगले आर्जे हैं ऑलरेडी स्टूडियो में आ चुके हैं, और यहीं पे हम जा रहे हैं, शो यही है, यहीं पे और सारे लोगों से मुलाकात होगी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है, खुद का ख्याल रखिए। आज महीने का आखिरी दिन भी है, तो अगर आपका कोई पेमेंट बाकी है, कोई जो महीने के आखिरी दिन से पहले, अगले महीने में जाने से पहले करना है, तो आज ही वो पेमेंट कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड का है, या किसी का ड्यू है, या कुछ और।

है, तो प्लीज़ आज रिमाइंडर है कि आज 31 मई है और आज ही वो पेमेंट करना है, तो उसका भी ध्यान रखिए। कभी कभी स्कूल में भी होता था ना कि आज रजिस्टर डे के दिन हाफ डे होता था, क्योंकि वो रजिस्टर पूरे मेंटेन होते थे। यस, विद दिस अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। आई एम योर आरजे जागृति, साइनिंग ऑफ, टेक इट अवे।

0: FM Rainbow 101.9।
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 25 सेकंड्स हो चुके हैं। वक्त हुआ चला है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

0: करके आपके अपने दिल का बोझ भी हल्का कर देती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए नफरतों को पालने के बजाय वक्त रहते माफ करना सीखो। हमारे इसी खूबसूरत पैगाम के साथ सामाइन, आज के नए रंग के बज़्म में शामिल प्रोग्राम की तफसील हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले आज के बज़्म में पेश किया जाएगा हरफे ताबिंदा। तहरीर वो पेशकश है जनाब एम ए हैगी। फिर होगा भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत हम आपको सुनाएंगे पुराने हिंदी फिल्मी गीत, और आखिर में पयाम शब भी पेश किया जाएगा। तो सामाइन आइए हज़्ब दस्तूर बज़्म का आगाज करते हैं हरफे ताबिंदा से। तहरीर वो पेशकश है जनाब एम ए हैकी।
1: नर्म खोई का मतलब यह है कि गुस्से से मतलूब होकर सख्त अल्फाज या सख्त रवैया इख्तियार करने से परहेज किया जाए, दूसरे से नर्म अल्फाज और नर्म लब व लहजे में बात की जाए। अगर किसी को टोकना हो या इससे इख्तलाफ का इजहार करना हो तो इसके लिए भी ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाए जिसमें खुरदुरेपन और दृष्टि के बजाय खैरख्वाही, तवाज़ और दिलसोजी का पहलू नुमाया हो। अगर किसी छोटे की तरबियत के लिए इस पर गुस्सा करना ज़रूरी हो तो वो भी सिर्फ़ बक़दर ज़रूरत और एतदाल के हदूद में हो। इसी तरह नर्म खोई का एक हिस्सा ये भी है कि बात बात पर लोगों से उलझने, बहस करने या झगड़ने से परहेज किया जाए और लोगों से हत्तल इम्कान हुस्न ज़न का मामला किया जाए, यहाँ तक कि जब किसी से ख़रीदो फरोख्त वगैरह का मामला पड़े तो इसमें भी कीमत वगैरह के मामले में ज़िद और बहस का अंदाज इख्तियार ना किया जाए। अगर मामला काबिल कबूल हो तो कबूल कर लिया जाए और काबिल कबूल ना हो तो छोड़ दिया जाए, लेकिन दूसरे को अपनी बात मानने पर मजबूर करना और तंग करना अच्छी बात नहीं है। जब कोई चीज़ बेचने इस वक्त भी, जब कोई चीज़ ख़रीदे इस वक्त भी, और जब किसी से अपने हक़ का तकाजा करे उस वक्त भी नर्म खोई इख्तियार की जाए। इंसान की तारीफ़ यह नहीं कि इससे गलती सरजद ना हो, बल्कि इंसान की तारीफ़ यह है कि वह अपनी गलतियों की मुसलसल इसलाह करता रहे। गोया गलती का सुदूर एक नागुज़ीर बात है। गलतियों पर दरगुजर करना बाइस इज़्ज़त है जिससे शराफत हासिल होती है। एक मगरबी फ़लसफ़ी का कहना है कि तनवर की आग ज़्यादा न बढ़ाओ कि दुश्मन को नुकसान से पहले खुद को न जला बैठो। एक शख्स ने कहा कि मैं आपको ऐसी गाली दूंगा जो आपके साथ बुरी हद तक महसूस की जाएगी। यानी शहद की मक्खी ने छत्ते से कहा तो संभल मैं उड़ना चाहती हूँ, तो छत्ते ने कहा कि तू कब मुझ पर बैठी और कब उड़ेगी, तो मालूम ही नहीं, तेरे उड़ने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
0: समय अभी आप समाप्त कर रहे थे हरफे ताबिंदा। तहरीर वो पेशकश थी जनाब एम ए हैगी। बहुत खूब हिकमत की बातें हमने अभी समाप्त की है। जी हाँ, नर्म खोई जो है वो इंसान को बुलंद कर देती है। समय ने मोहतरम घड़ी की सुइयों ने वक्त का इशारा किया है और हम हाजिर हो गए हैं आपके पसंदीदा और सदाबहार प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते के साथ।

किसी के लौट आने की उम्मीद आज भी है, पुरानी यादों की खुशबू इस दिल में आज भी है। वक्त बदल गया, बदल गए रास्ते मगर, वक्त बदल गया, बदल गए रास्ते मगर, तेरे साथ बीते लम्हों की चांदनी आज भी है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जब अपनी तेज रफ्तारी, अपनी मादा परस्ती और अपनी मसरूफियत से हमें जब थका देती है, तो रूह किसी ऐसे साए की तलाश करती है जहाँ थोड़ी देर को ठहरा जा सके। माजी का वो वाहिद सायादार दरख्त जिसकी छांव कभी खत्म नहीं।

होती, वो दौर जब घर मिट्टी के थे मगर रिश्ते जो थे वो बिल्कुल खाली सोने की तरह थे। जब शाम होते ही दलान में चटाई बिछाई जाती थी, पानी का छिड़काव होता था और रेडियो के गिर्द पूरा खानदान यूं बैठता था जैसे कोई बहुत बड़ी महफिल सजने वाली हो। आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं मासूम खुशियों, इन्हीं सच्चे रिश्तों और इन्हीं सदाबहार नगमों के नाम हैं जिन्हें वक्त का बेरहम धुआं भी हमसे नहीं छीन सका। अपनी दिल की खिड़कियां खोल दीजिए क्योंकि यादों की एक ठंडी हवा चलने को है।

वाह, किशोरदा की आवाज़। वो दिन, वो शामें, वो गुजरे हुए माह, वो गुजरे हुए साल। सच कहिए तो वक्त कितनी ही तेज़ी से क्यों ना बदल जाए। कुछ चीज़ें दिल के किसी कोने में हमेशा महफूज रहती हैं, जैसे किताबों में सूखे हुए गुलाब, जैसे मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी, और जैसे रेडियो से गूंजती हुई कोई पुरानी मधुर आवाज़। आपकी ज़िंदगी की इन्हीं खूबसूरत यादों के नाम है आज का ये जो प्रोग्राम है। अपने दिल की खिड़कियाँ खोल दीजिए, क्योंकि यादों की एक ठंडी हवा चलने को है। वो दौर जब खुशियाँ सस्ती थी और रिश्ते अनमोल थे, जब इतवार की सुबह का इंतज़ार होता था और पूरा मोहल्ला एक ही टीवी या रेडियो के गिर्द जमा हो जाता था। आज हम उसी दौर की खुशबू समेटेंगे। आइए यादों के इस सफ़र का अगला लाजवाल नगमा सुनते हैं, जिसके बोल है पल पल दिल के पास।

वह आवाज़ का वो जादू जो आज भी दिल को उदास भी करता है और एक अजीब सा सुकून भी देता है। समय आज जब हम स्मार्टफोन्स के दौर में जी रहे हैं, जहाँ एक क्लिक पर पैगामात दुनिया के दूसरे कोने तक पहुँच जाते हैं, मुझे अक्सर वो पुराना दौर याद आता है जब पैगामात कागज़ पर लिखे जाते थे। हाय, खतों का वो दौर कितना सुहाना था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, जिसमें हम भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत आपको सुना रहे हैं पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आइए सुनते हैं अगला नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

Rainbow 101.9. दोस्तों आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियोज की घड़ी में 9:54 हो चुके हैं। भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत हम आपको सुना रहे हैं पुराने हिंदी फिल्मी गीत। जी हाँ, वो भी क्या दौर था जब डाकिया गली में आता था तो सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती थी। खत का इंतजार करना, उसे बार बार पढ़ना और उसकी खुशबू को महसूस करना, ये वो एहसासात हैं जो आज की डिजिटल दुनिया में कहीं खो गए हैं। समय आजकल तो लोग सेकेंडों में मैसेज लिखते भी हैं और सेकेंडों में उसे डिलीट भी कर देते हैं। इस तेज रफ्तार दौर में वो मोहब्बत और वो इंतजार कहाँ। आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, जिसके बोल हैं चुरा लिया है तुमने।

वाह, पुराने गीत के जो अल्फाज है, जो एहसास है, वो आजकल के नगमों में कम ही सुनने को मिलते हैं। जी हाँ, मुझे याद है वो खतों का दौर, जब मोहब्बत का इजहार नीले या सफ़ेद कागज़ पर स्याही से किया जाता था। खत लिखना कोई मामूली बात नहीं थी साहब, ये एक इबादत जैसा था। अल्फाज का इंतखाब, बार बार लिख कर मिटाना, जज्बाती होकर आंसू का कागज़ पर गिरना और फिर उसी खत को किसी इतर में बसा कर किताब के अंदर छुपा देना। अहमद फराज साहब ने जब इस कैफियत को देखा तो उन्होंने वो शाहकार शेर कहा जो आज भी हर डायरी की जीनत है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। वो जो डाकिया गली में आता था तो दिल की धड़कनें रुक जाती थी कि शायद कोई पैगाम आया हो। इस इंतजार में जो लज्जत थी वो आज के स्मार्टफोन्स में कहाँ। चलिए इसी इंतजार और तड़प के नाम ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, जो कि लिया गया है फिल्म नाम से, और पंकज उदास साहब की ये जो गजल है बहुत ही खूबसूरत है, जिसके बोले चिट्ठी आई है

दोस्तों आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपका अपना शो भुलाए नहीं भूलते। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। समय बात जब पुराने वक्तों की हो, तो ब्लैक एंड वाइट सिनेमा का जिक्र कैसे ना हो। वो दौर जब फिल्में सिर्फ तफरी नहीं बल्कि जिंदगी का आईना हुआ करती थी। राज कपूर, दिलीप कुमार, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अदाकारी को एक नया मेयार दिया था। उस दौर के सिनेमा हॉल्स की रौनक ही अलग थी। फिल्म शुरू होने से पहले का वो जोश और फिल्म के गानों पर तालियां बजाना, ये सब हमारी सकाफत का एक अनमोल हिस्सा है। आज की नस्ल शायद इस सादगी को ना समझ सके, लेकिन जिन लोगों ने वो दौर जिया है, वो जानते हैं कि उस ब्लैक एंड वाइट दुनिया में कितने रंग बिखरे हुए थे। चलिए उसी सुनहरी दौर का एक इंतहाई खूबसूरत सा नगमा, जो कि लिया गया है फिल्म मेरा नाम जोकर से।

दोस्तों आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम एन नैरंग, जिसमें भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत हिंदी फिल्मी गीत हम आपको सुना रहे हैं। समय जिंदगी जो है, हमारा जीवन जो है, वो भी एक रेडियो शो की तरह ही है, जहाँ हर लम्हा एक नया गीत है। कुछ गीत उदास करते हैं और कुछ गीत चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। जी हाँ, हमारी जिंदगी में कभी कुछ पल ऐसे आते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कभी उदास हो जाते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम इन यादों को संभाल कर रखें। आइए हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, जो कि लिया गया है फिल्म जूली से।

दोस्तों, हिंदी फिल्मों के गीत सिर्फ गीत नहीं होते, ये हमारी जिंदगी के लम्हों की आवाज होते हैं। कभी पहली मोहब्बत की मुस्कुराहट, तो कभी बिछड़ने का खामोश दर्द। अगला गाना वो दिल की गहराइयों से निकला हुआ एहसास है, जो सुनते ही यादों का दरवाजा खोल देता है। तो आइए चंद लम्हों के लिए सब कुछ भूलकर इस खूबसूरत गीत को अपने दिल का हमसफर बनाते हैं। ये रहा आपके लिए एक दिल को छू लेने वाला हिंदी फिल्मी गीत।

वाह, क्या धुन थी, क्या एहसास था। ऐसे गाने खामोश दिलों को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। अगर ये गीत आपकी किसी याद से जुड़ा है तो मुस्कुराइए, क्योंकि यादें ही तो जिंदगी है। अब वक्त है थोड़ा सा मूड हल्का करने का। जी हाँ, जिंदगी में मुस्कुराहट बहुत जरूरी है दोस्तों। आइए सुनते हैं अगला गीत, उन लम्हों के नाम जब दिल बेवजह खुश होता था।

दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम कितने ही आगे क्यों ना निकल जाएं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमारे कदम रोक ही लेते हैं। जी हाँ, वो गुजरा हुआ कल, चाहे वो बचपन की गलियां हो, वो बारिश का पहला खतरा और वो कागज की कश्ती, आहा, वो रेडियो के गिर्द बैठा पूरा खानदान, ये सब वो यादें हैं जो वक्त की धूल में धुंधला तो सकती है मगर मिट नहीं सकती। आज के इस प्रोग्राम में हम वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएंगे, हम उड़ान भरेंगे उस दौर की तरफ जहां दिल सच्चे थे, रिश्ते पक्के थे और मौसीकी रूह की गिजा थी। तो अपने दिल के दरवाजे को खोल दीजिए, क्योंकि यादों की एक बहुत प्यारी बिरादरी आपकी मुंतजर है।

FM Rainbow 101.9. समय भुलाए नहीं भूलते कि इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए क्यों ना माजी के उस अजीम लफ्जों के जादूगर का जिक्र किया जाए जिसने रोमानवी शायरी को एक नया फलसफा दिया। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ साहिर लुधियानवी का। साहिर वो शायर थे जिसने मोहब्बत को सिर्फ महबूब के चेहरे तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसे जिंदगी की तल्ख सच्चाइयों से जोड़ा। जब उनकी लिखी हुई गजलें और गीत रेडियो पर गूंजते थे तो ऐसा लगता था

जिसे हर लफ्ज की दिल की गहराइयों से तराशा गया हो। इनका वो लाजवाल शेर याद कीजिए जो आज भी उदास दिलों का तर्जुमान है। जी हाँ, तुम चलोगी तो यादों के साए मिलेंगे, हम ना होंगे तो हम जैसे पाए मिलेंगे। चांदनी रात में जब भी देखोगी तुम, हम तुम्हें हर एक मोड़ पर मुस्कुराते मिलेंगे। वाह, क्या शहर है उनके अल्फाज में। आइए साहिर लुधियानवी के लिखे हुए इसी दौर के एक खूबसूरत गीत की मधुर धुन में खो जाते हैं।

समय आज की इस शाम का सफर अधूरा रहेगा अगर हम उर्दू अदब के उस रोशन सितारे का जिक्र ना करें जिसने कैदोबंद की सोबतों में भी मोहब्बत और इनकलाब के गीत लिखे। जी हाँ, हमारे हर दिल अजीज फैज अहमद फैज साहब। फैज की शायरी में एक ऐसा सुकून है, एक ऐसी पुरवकार उदासी है जो इंसान को तन्हाई में भी एक अजीब सा हौसला देती है। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, जो कि जिसके बोल हैं हम भूल गए रे तेरा साथ।

मोजिस सामाई, अब घड़ी की सुइयां गवाही दे रही है कि हमारे आज के इस खूबसूरत सफर का वक्त खत्म हो रहा है। गुजरे हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते, मगर रेडियो की ये आवाजें और ये गीत हमेशा आपके साथ रहेंगे। इन यादों के चिरागों को अपने दिलों में रोशन रखिएगा। अगले हफ्ते इसी दिन और इसी वक्त आपसे

का ही साथ था, लेकिन जिंदगी ए कुमार ले डूबी। हर रिश्ता वक्त की लामाई से नहीं बल्कि गहराई से पहचाना जाता है, इसीलिए हर ताल्लुक को संजीदगी और एहतियात से निभाएं। किसी एक रिश्ते या शख्स को अपनी पूरी जिंदगी का मरकज बना लेना खतरनाक हो सकता है। तवाजुन ही जहनी सुकून देता है। मोहब्बत या ताल्लुक अपनी पहचान, खुदी और मकसद को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, वरना इंसान अंदर से टूट जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वक्ती दुख को मुस्तकिल मायूसी में बदलने न दें। हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू दिल को मजबूत करता है और इंसान को टूटने से बचाता है। किसी भी ताल्लुक में हद से ज्यादा डूब जाना इंसान को कमजोर कर देता है, इसीलिए मोहब्बत करें मगर खुद को संभाल कर।

101.9 MHz पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। समय इसी के साथ नारंगी बज्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तब तक अपना और अपने प्यारों का और उनका भी ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। शब खैर, जय हिंद।

0: आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी समाचार बारी बारी से नशर किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन

0: निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Man Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi

0: जाए चुपके से आए।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: अजाब। जिंदगी जो है वो एक किताब है और हर पन्ने पर लिखा है एक नया रिश्ता। कहते हैं कि कभी दोस्ती का रंग होता है, कभी मोहब्बत का जादू, और कभी खामोश वादियों में बिखरी हुई यादें हैं। मोहब्बत का रिश्ता तो वो है जो दिल की हर धड़कन में बसता है, उसकी एक मुस्कान, वो नज़रों का मिलना, मानो सारी कायनात थम सी जाए। और साहब जब मोहब्बत होती है और प्यार होता है तो हर गली हर चौराहा उसकी बातें करता है। और आज हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो हमें जीने का मकसद देते हैं। तो चलिए इस रात को और ज़्यादा रंगीन बनाते हैं और खूबसूरत गज़ल के साथ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: और जनाब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभी जॉइन करें वो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर, मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद, प्रोग्राम रंगे महफिल। रात की इस खामोशी में जब सितारे चुपके से बातें करते हैं तब दिल में एक तड़प जगती है, वो तड़प आपने किसी खास की जिसके बिना ये रात अधूरी सी लगती है। और साहब रिश्तों की मिठास तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दो दिल एक दूसरे के लिए बेकरार हो जाएं। वो चांद जो मेरे आंगन से दिखता है क्या वो भी तुम्हारी खिड़की से झांकता है? और अगर हाँ तो क्या तुम भी उस चांद में मुझे ढूंढते हो? इस सवाल का जवाब तो आपके दिल में है। और हम तो बस इतना ही कहेंगे कि रिश्ते वही खूबसूरत हैं

जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। औजा प्यार की राहों में कांटे भी हैं, मगर उन कांटों में भी एक सुकून है। जब दिल में दर्द मिलता है तो हर दर्द हर गम एक गीत बन जाता है। और आज की इस महफिल में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी गज़लें जो सुकून भी दे रही हैं और आपके जज्बातों को भी छेड़ने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी

अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

रात का आलम कुछ यूं है जैसे कोई पुरानी किताब खुली हो और हर पन्ने से कोई याद बिखर रही हो। और साहब वो यादें वो ख़जाना है जो कभी पुरानी नहीं होती, कभी किसी की हंसी, कभी किसी की बात और कभी कोई लम्हा जो बस दिल में बसा है। और जब ऐसी यादें गज़लों के साथ जुड़ जाएं तो फिर महफिल अलग बन जाती है।

रंगी मैं फिलिक्स दू शरीय शहर में गहरों पर सवार हैं आप और साहब, अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह एक अल्तजा आपसे है कि अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। खुदा हाफिज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए

17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा कर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल, बाहर भी जाग चुकी है और हम भी जाग चुके हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये रात है, बल्कि रात तो सोने के लिए है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर, दिल्ली में ही नहीं, एनसीआर में भी, जो हैं अपने काम में लगे हुए हैं। किसी ने अभी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंजॉय की होगी कुछ देर पहले, कोई साइकिलिंग करके आया होगा। बहुत लोग हैं जो हमारा साथ बनते हैं, हमारे संगी बनते हैं इस पहर में, जब 31 मई को छोड़कर अब 1 जून दे चुका है दस्तक हम सभी की जिंदगी में, हमारे कैलेंडर्स पे और हमारे रूटीन, हमारे शेड्यूल पे भी। अब आने वाले जो दिन हैं लगभग 30 दिन, उनका पूरा खाका भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग तो मुकम्मल कर भी चुके होंगे कि भाई अब फर्स्ट के बाद क्या करना है, सेकंड के बाद क्या करना है, किसी का अपना बिजनेस है तो किस तरह से उसे रोटेट करना है चीज़ों को। तो ये बहुत सारे जमावड़े हैं, बहुत सारी घटनाओं और किस्से कहानियों के गहवारे हैं जिन्हें हम अक्सर अपने ख्यालों में बुनते हैं, और ऐसा करने में उन जो स्ट्रेस आपको घेर सकती है उससे बचाव करने का मौका देते हैं हम आपको अपने साथ जोड़कर। इसीलिए हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो साथी हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी हैं हिंदी बेल्ट के लोग हैं, वो हमेशा हमारे असली साथी होते हैं, और हम उनका दोस्त, उनका हमकदम बनने की भरसक कोशिश करते हैं। जैसे कि अब प्रोग्राम है जीरो आवर शो, क्योंकि कैलेंडर बदल चुका है, टाइमिंग्स बदल चुके हैं, अब जीरो आवर के साथ साथ लगभग 14

0: सेकेंड भी हो चुके हैं। तो वक्त हो चला है जीरा और शो का, और इसकी पहल भी हम कर चुके हैं, इसका आगाज भी हम कर चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है पूरी तरह से प्रोग्राम की। फिल्म हीरो से अभी आपने लता जी को सुना, इसके बाद भी बहुत खूबसूरत गाने हम लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर आप रात भर जागने वाले हैं तो इस रात को रंगीन करने में, इसे और हसीन और सुरमई करने में हम आपकी मदद करें, हम आपके सच्चे दोस्त साबित हों। तो स्वागत आप सभी का, और कुछ कहना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं, 9868107070, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। मैं हूं आपका दोस्त रजत, प्रोग्राम है जीरो आवर शो, आप सभी का तहे दिल स्वागत एक बार फिर से।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा

जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी।

आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने

बारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूपीटी 4, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार और तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी हाँ, हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में हम आपको समय बताए देते हैं, रात्रि का 1:06 और 19 सेकेंड्स। और लीजिए, ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुहानी रात का। तो अब इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा से ये खूबसूरत से गीत। आनंद लीजिए इन गीतों का।
1: वो है सावन है, सुहानी शाम है। वो है सावन है, सुहानी शाम है। अब भला इनकार का क्या काम है।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: बिल्ली स्टाइल गया है बम्बई। जो कहानी हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिट।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं

इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक।

जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

कहती है कर ले प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

श्रोता आनंद ले रहे थे इन खूबसूरत से गीतों का कार्यक्रम था ये जीरो आज, माफ कीजिएगा सुहानी रात। साथियों स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 2 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से

हरा कर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने दो ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, तहे दिल स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप जुड़े हैं हमारे साथ हमारी ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी। करना यह है कि इस ऐप को ढूंढ निकालना है प्ले स्टोर से, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, और इस पर सर्च करना आकाशवाणी रेनबो डेली और जुड़ जाना है हमसे फ़ौरन से पेशतर, जहाँ तक भी आप सुन सकते हैं हमें, आप सुन रहे हैं। और लगभग पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी ऐप के ज़रिए हमारे श्रोता हैं, काफ़ी जगहों से हमारे मैसेजेस नियमित रूप से मिल भी रहे हैं, और अच्छा लगता है जब दूर दूर से हमारे श्रोता हमारे साथ ही हमारे साथ स्नेह मोहब्बत प्रेम बनाए रखते हैं। इसी प्यार, इसी दुलार की खातिर, इसी मोहब्बत की खातिर हमारा पूरा जुड़ाव है आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ, आकाशवाणी रेनबो के हमारे नियमित श्रोताओं के साथ, जो बहुत अरसे से, काफ़ी अरसे से इस चैनल से जुड़े हैं, हमारे हर एक शो से, हमारे एक हर एक प्रोग्राम से उनकी वाकफियत है, और वो चाहते हैं कि आकाशवाणी रेनबो का जो जुड़ाव है उनके जीवन से हमेशा जुड़ा रहे, और हम भी यही चाहते हैं। हमें अपने श्रोताओं की कमी कभी भी ना खले, और वो हमेशा हमारे साथ रहें, हर शो में हमारे साथ रहें, उनकी बातें हम तक पहुँचे हैं, उनके मन की जो इच्छा है वो हम तक पहुँचे, मन की बात जो आप कहीं ना कर पाएँ वो हमसे कर सकें, वो गाने जो आप कभी सुनते थे लेकिन आज कम कमोबेश सुनाई देते हैं, वो आप हमारे ज़रिए सुन सकें, ये हमारी कोशिश रहती है। और इसी कोशिश को और नायाब किए हुए है हमारा ये चैनल, हमारा ये प्रोग्राम। और फिलहाल इसी शो की अगर बात करें तो इसका नाम हमने और आपने मिलकर रखा है, भुलाए ना बने। तो ऐसी बातें, ऐसे गीत आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा, जो वाकई अभी तक आपके दिल से, जहन से, दिमाग से, ध्यान से नहीं हटे हैं इतने साल गुजर जाने के बाद भी, और वाकई वो इस कदर आ चुके हैं आपके जहन में, दिल में जगह बना चुके हैं इस कदर कि भुलाए ना बने। भुलाए ना बने में मैं आपके साथ आपका स्वागत करता हूँ, आपका श्रोता, अपने सभी श्रोता मित्रों का, मैं आपका दोस्त रजत, बहुत अभिनंदन, बहुत मोहब्बत मिले आपको, बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिन की। और फिलहाल इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़ चुके हैं, इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल पुरखनूस अभिनंदन, स्वागत, एहतराम।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात रेनबो की सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ऑलवेज वेयर एवर यू आर 102.6 आपके लिए
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती
7: आज की रात मजा
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा
5: म्यूजिक मस्ती
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ मौका खास है
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती

कितना गवारा प्यार मेरा, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने

0: योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। वे निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि उनकी सेना ने दक्षिणी लबनान में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा कर लिया है। इसराइल की सेना ने कहा कि ब्यूफोर्ड रिज और वादी अल सलूकी क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर करना है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लबनान के जहरानी नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को खाली करने को कहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:06 और 15 सेकंड्स, और ये है समय आपके पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। तो लीजिए आनंद लेते हैं इन खूबसूरत से गीतों का।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मिडनाइट मेलोडीज के अंतर्गत श्रोता सुन रहे थे ये नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक

0: नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में

0: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 155 रन का लक्ष्य दिया 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह के 4:16 आप जुड़ चुके हैं प्रोग्राम सारे गामा से हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप जुड़े हैं इसी शो को सुनने के लिए। सारे गामा का आज का अंक मैं लेकर उपस्थित हूं आपका दोस्त रजत। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप जुड़े हैं, नए पुराने गीतों का संगम ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को आप अक्सर इन मीटर्स पर, इस फ्रीक्वेंसी पर इसी समय सुना करते हैं जब भोर होने में बस कुछ ही लम्हा शेष है। ऐसे नपे तुले गानों को लेकर हम आते हैं जो खूबसूरत हैं, सारे गामा की धुनों से सुसज्जित हैं और नए दिन का आगमन करने में, उसका स्वागत करने में सक्षम है। एक खूबसूरत स्मूथ मेलोडी के साथ हम आगाज करते हैं आज के दिन का, जो कि तकरीबन हम 4 घंटे पहले कर चुके हैं, लेकिन सारे गामा में हम नए पुराने कुछ गीतों की शुमारी रखते हैं जो आपको पसंद आते हैं और पसंद आएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। स्वीकार कीजिए मेरा यानी रजत का नमस्कार, अभिवादन, स्वागतम प्रोग्राम सारे गामा में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउनलाइन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा, संपर्क व्यवस्था और द्विपक्षीय सहयोग सहित आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने भी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

0: राष्ट्रपति के रूप में श्री लाइन की यह पहली यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति मुंबई भी जाएंगे, जहां वे उद्योग तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने

0: ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी बला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी। श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को 5 कैबिनेट मंत्रियों की टीम के साथ कार्यभार संभाला था। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी। ये संख्या 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए निर्धारित संवैधानिक सीमा के भीतर होगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना तथा पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लबनान में रणनीतिक महत्व वाले ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा कर लिया है। IPL के फाइनल मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया। गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:06:19। और लीजिए श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रजा का नमस्कार।

0: दिल के तराने गाने नए पाने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।